0: और वो तुझ पर मेहरबान हो, उसकी हिफाजत में तू महफूज रहे, चाहे जहां कहीं तेरा ठिकाना हो।
1: Broadcasting the sound of faith in Jesus Christ, we're Hope Radio, TAWH, Palau.